भाई सूरज तो रोज उगता है, लेकिन भोर सुहानी सिर्फ उनके लिए होती है जो उठकर नई उम्मीदों के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। जी हाँ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो, गहरी सांस लें और खुद से कहें, आप हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। फिर देखिए, ये प्रकृति और ये मौसम भी किस तरीके से आपके साथ साथ गाता है और झूमता है।

फूल, रंग, धूप और मुस्कान। हमेशा याद रखिए, आप स्वयं में ही एक उत्सव हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में आनंद और रस बना रहना चाहिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे हम।

0: आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा

0: गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

यस यतैको मेसेज एकटा होइन से त्यो अभिजितको होइन बगजानपा लेखिन बताएको छ तै लेखिसे गुड मर्निङ अजय जेकब सर जी द नागा पिपल बहुत अच्छा होता है वेन एभर आई भिजिट नागाल्यान्ड आई फिल रियली गुड एन्ड आई रियली इन्जोय टकिङ टु द नागा पिपल दे आर वन्डरफुल पिपल को यहाँ लेखि आछ वेल थ्याङ्क यू सो मच अभिजित फर योर एप्रिसिएसन आफ्नो यहाँनिर एकदम नागा मानुहरूको बेसी उठाइदिया कारणले धन्यवाद दिएछ आफ्नो कि यति निस्किना প্রোগ্রাম বি শুনি আছে কথাটো জানি কিনে বেশি খুশি আছে তো ভাল থাকিবি আর দোসরা গীত শুনব এটা মোহাম্মদ রফি আর আশা ভোসলে লেখা ওয়াস্টে আছে ফিল্ম আছে হম কিসি সে কম নেই গীত লিখে হয়েছে মজরু সুলতানপুরি আর মিউজিক দিয়া হয়েছে আর ডি বর্মন

वेल लिसनर्स का नाको दूसरा गीत शुनिब किशोर कुमार लगा वास्ते से फिल्म आसे जमीर गीत लिखे शाहिर और म्यूजिक दिया सपन चक्रवर्ती।

छोटे दूसरा गीत हुए के लगा वास्ते से फिल्म से वो लम्हे गीत लिखे हुए से शाहिद कादरी और म्यूजिक दिए हुए से प्रीतम।

वाले ते को मेसेज आहिगे ना से हेतु लिखिया से गुड आफ्टरनून आरजे चॉइस पोस्टन गाना तो आपनी भाल लगी ऐसी कोई ना बाली पत्थर पर सिकरी रोंग पर जोगेंद्र रोंग पी बिरेन हंसे आरो साथी खान लिखी ना बता से दैट इज ते गान सब हुनी ऐसे कोई ना जानिया तो बिसे खुशी ऐसे तो निशी ना को हुनी था कि भी आरो ये ते गुड आफ्टरनून एफ एम ट्रकपान फैमिली कोई ना लंबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप ते खान भी लिखी ना बता से वेल थैंक यू सो मच लंबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप आरो गुड आफ्टरनून आरजे नमस्कार लिसनर्स आसे दुर्गेश नागनपुरी राजेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश सुरेश कुमार दक्षी प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा सुरेश वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा तेखन भी लिखी ना बताइए वेल थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज आरो यदि लिखिया से अभिजीत बोगाजान प्राताय लिखिया से Good afternoon, sir. G. I don't know much about the whole Nagaland, but in Dimapur there are some groups that. Okay, thank you. Anyway, thank you so much. Likhi na pathai dia koi na likhi na pathai dia karone. So, thank you so much. Next gana ko huni bo kya laga waste se film se New York. Geet likhi hoye se Sandeep Srivastava aur music di hoye se Pritam.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? संडे हो या मंडे, हर दिन म्यूजिक के नाम है। और अगर प्रोग्राम हो रिक्वेस्ट बेस्ड तो आई एम श्योर आप सब बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि अगले एक घंटे तक बजेंगे वही गाने जो आप दिल से मांगेंगे। और आई एम श्योर दिल से तो आते ही हैं गाने। अब उन लोगों के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, याद करते हैं, या बस एक मुस्कान देना चाहते हैं। 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम शुरू हो गया है, मेरा वाला सॉन्ग विद योर आरजे खुशी, जहां आप सुनेंगे आपके ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग जिनके साथ आई एम श्योर कोई ना कोई कहानी या याद जुड़ी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस म्यूजिकली सफर। 9868107070 यानी कि 9868107070 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, रिक्वेस्टेड सॉन्ग, अगर कुछ बात उसके साथ आप बोलना चाहते हैं छोटी सी एक लाइनर तो वो भी। आई एम श्योर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, श्योरिटी नहीं दे रही, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी रिक्वेस्ट रेनबो स्टेशन पर चलाने की। 9868107070 इज द नंबर।

कहते हैं ना, जो दोगे वही मिलेगा। भाई जिंदगी से प्यार करोगे तभी तो जिंदगी प्यार के और मौके देगी। आपके आसपास ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनसे आप प्यार कर सकते हैं और वो भी आपको प्यार करेंगे। इसका मतलब है जो बोगे वही पाओगे। और मैंने जो बोया था वो था एक नंबर, और उस नंबर से मैंने पाए हैं बड़े सारे मैसेजेस। तो मेरे पास मैसेज आया है मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम का, कीर्ति नगर जवाहर कैंप से मैसेज कर रहे हैं, बॉर्डर या धुरंधर फिल्म से ये कोई गाना सुनना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बॉर्डर या धुरंधर से आपको गाना सुनाऊं। नमस्कार मैडम जी, राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा जम्मू एंड कश्मीर से लिख रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत सुनना चाहते हैं। हाय हाय ये मजबूरी और ये मौसम और ये दूरी। बताना भाई कौन सा, भाई मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है, दूरी कौन सी बनी हुई है लोगों के बीच में। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश से उज्जैन जिले से चांदनी फिल्म का गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरे पास उत्तम नगर दिल्ली से जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल का मैसेज आया और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैडमैन फिल्म का गाना। तो बड़े सारे रिक्वेस्ट है भाई, लेकिन मजबूरी तो हमारी भी है कि हम कुछ ही गाने चला सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला गाना आप सभी लिसनर्स के लिए।

दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी बैड मैन, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना था और मैसेजेस आ रहे हैं। अंजलि हापुड़ से लिख रही हैं, आठ पर्चा गाना सुनना चाहते हैं। अंजलि मुझे ना ये गाना समझ में नहीं आया, कौन सी मूवीज है प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी इस गाने को चलाने की या ढूंढने की। तेज कुमार गुप्ता जी जनता विहार दिल्ली से बिच्छू मूवी का गाना सुनना चाह रहे हैं। और मेरे पास मैसेज आया है, पंकज लिख रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, मेरे वाला सॉन्ग सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। और ये लिख रहे हैं नरसिम्हा मूवी को आज रिलीज हुए 35 साल हो गए हैं, तो उस मूवी का ये कोई एक गाना सुनना चाहते हैं। नमस्कार खुशी जी, मैं मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप वो लम्हे फिल्म का तू जो नहीं है सॉन्ग चला दीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी इनमें से कुछ गाने सुनाने की। फिलहाल जो धुरंधर मूवी का कोई एक गाना रिक्वेस्ट हुआ था तो पहले मैं वो चलाती हूँ, और फिर जैसा कि नरसिम्हा मूवी का के बारे में अब बोला है तो आगे पीछे कभी पुराने गाने कभी नए गाने सारे मूड और सारे टेस्ट के गाने सुनने तो बनते ही हैं। जैस्मिन सेंटलास और सत्येंद्र की आवाज़ में ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

0: अब जान तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ आपके इतने सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं सॉन्ग्स की, तो मैं पहले नाम पढ़ देती हूँ। नीरज ध्यानी और आलोक गंगोत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये गाना सुनना चाहते हैं। और उत्तम नगर से कमला रानी, गीतिका भानु लिख रहे हैं, जब प्यार किसी से होता है से, ये गाना सुनना चाहते हैं 100 साल पहले। ईशा पावर लिखना चाहती हैं, बारिश चालू है तो चांदनी मूवी का आप गाना चला दीजिए। वैसे इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे किसी और ने भी की है, तो ये गाना मैं आप लिसनर्स को सुनवाती हूँ। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
6: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
5: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
6: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
5: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
6: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
5: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ लोग बोल रहे हैं तू जो नहीं है, और जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बारिश वाले गानों की रिक्वेस्ट की तो भरमार ही आई हुई है। भागवत नई दिल्ली से लिख रही हैं, टिप टिप बरसा पानी, और इसी गाने की रिक्वेस्ट और भी कई जगह से आ रही है। रवि मेरिट से लिख रहे हैं, कोई भी गाना बारिश पर चला दीजिए, शायद यहाँ पर भी बरस जाए। सात समंदर पार सुनना चाहते हैं प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से ये मैसेज कर रहे हैं। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जी, आप कैसे हो, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, एक रोमांटिक सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी। भाई बहुत रिक्वेस्ट आ गई है इस गाने की, ये तो चलाना ही पड़ेगा। और ये अपनी प्यारी पत्नी नंदिनी जी के लिए एफएम रेनबो पर डेडिकेट भी करना चाहते हैं ये सॉन्ग, तो ठीक है भाई, यही गाना सही उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सभी लिसनर्स के लिए।

0: सोच रही मैं भी आ ही जाती हूँ ताकि इस म्यूजिक के बीच में मैं और भी मैसेजेस ले सकूँ, और लोगों की अगर रिक्वेस्ट नहीं चला सकती तो उनके नाम तो बोल ही सकती हूँ। गुड आफ्टरनून खुशी मैम, कैसे हैं आप? प्लीज प्लीज सॉन्ग फ्रॉम द मूवी फिल्म राज वन से ये गाना सुनना चाहते हैं। अफशा खानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से ये मैसेज कर रहे हैं। और कसगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्या लिख रहे हैं, बंजारन सॉन्ग चला दीजिए, तेरी बंजारन रास्ता देखे। अच्छा जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं। डियर आरजे जी नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश मूवी से गाना कुछ कहता है ये सावन सुना दीजिए। मेरठ से ये मैसेज कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले से अच्छा मैसेज आया, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ये कह रहे हैं भाई हमारा नाम ले दीजिए गाने, किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए। ठीक है जी, आपको तो हर गाने में शामिल कर लिया, देख लो आपके सारे नाम बोल दिए मैंने जितने भी आपने रिक्वेस्ट किए थे। शिव नारायण उत्तर प्रदेश नोएडा से लिख रहे हैं, मौसम है आशिकाना ऐ दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना, ये सुनना चाह रहे हैं। और एक और बागेश्वर निशा जी का मैसेज आया है यूपी से, और ये गुरु फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ठीक है, हम पहले गुरु फिल्म का ही गाना चला देते हैं, लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद फिल्म गुरु से बरसो रे मेघा।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई,
2: ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

इसी गाने की रिक्वेस्ट दिनेश नार सिंह ने दिल्ली से भी की थी, और इसी के साथ हम काफी सारे मैसेजेस में ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज हमारा नाम ही शामिल कर लीजिए। तो शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी, पूरा परिवार आ गया है। तो अब्बासी परिवार के लिए जितने भी गाने बज रहे हैं भाई, आप भी सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि उनकी रिक्वेस्ट का हमने ये गाना बजाया। और सिस्टर, क्या आज हमारा नंबर आ जाएगा? क्या इन दोनों में से कोई ये गाना आप सुना सकते हैं? अरे, मेरठ कैंट से ये मैसेज लिखा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। भाई, बहन मान लिया आपने, बहन गाना नहीं चलाएगी, बताओ, आपने सिस्टर बोल दिया हमें। तो ये गाना आपकी रिक्वेस्ट का, द ग्रेट गैम्बलर मूवी से, आशा भोसले की आवाज में, आप सभी लिसनर्स के लिए।

0: सॉरी भाई, पूरा गाना तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, नहीं तो काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई सबके गाने चला रहे हो, हमारा गाना क्यों नहीं चला रहे। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप सभी के जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है उनमें से कुछ ना कुछ जो कॉमन रिक्वेस्ट आ रही है वो गाने जरूर चलाएं। वैसे गाने तो हर जगह बजते हैं, लेकिन जब उन गानों के पीछे अपना नाम लग जाता है या वो किसी नाम से जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, वो एक याद बन जाता है, बातें करने का बहाना बन जाता है। लेती हूँ मैं छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी लिसनर्स की रिक्वेस्ट आगे बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं नंबर बता देती हूँ। नंबर बीच में मैं बताना ही भूल गई क्योंकि मैसेजेस ही इतने सारे ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी नंबर बता देती हूँ। 9868107070, यानी कि 9868107070। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई गाना जो आप सुनना चाहते हैं, अगर उसके पीछे कोई याद जुड़ी हुई है, जो आप सिर्फ अपना नाम नहीं सुनना चाहते, चलो मैं एक लाइन की याद भी लिख देता हूं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट शॉर्ट एंड क्रिस्प। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आपकी आर से खुशी के साथ।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।

ये देखिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज पर है, क्योंकि मैसेजेस तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन ये वाला मैसेज मैंने, ऐसा वाला मैसेज तो नहीं देखा। आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली के नाम पर ये चंद लाइनें यश शिंदे ने भेजी है मुंबई से। धड़कने थम सी जाती हैं इसके तान पर, दिल से आ जाता है रेनबो के हर एक गान पर। सदियां बीत जाए चाहे बदलते दौर में, जादू आज भी वही है एफएम के इस शोर में। रास्ते खूबसूरत हैं और हम सफर है रेनबो, और गम सारे भूल गए जब साथ मिला ये वो। आरजे दोस्तों की बातों में छुपा है वो अपनापन, जिससे महक उठता है दिल्ली का हर एक मन। लव यू आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली के लिए ये चंद लाइनें यश शिंदे ने भेजी है मुंबई से। तो इनकी भाई रिक्वेस्ट, भाई प्लीज रिक्वेस्ट तो बनती है, इतना अच्छा इतना खूबसूरत मैसेज लिखा है, भाई रिक्वेस्ट तो बनती है। तो ये गाना इन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म लुटेरे से, मोनाली ठाकुर की आवाज में, सवार लो।

मैसेजेस तो मेरे पास काफी सारे हैं, लेकिन आई एम सॉरी मैं सारे तो मैसेजेस इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी भाई, ढेर सारे मैसेजेस हैं। और श्याम सुंदर जी गोवा से लिख रहे हैं, ये भी गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं, इन्हीं सब में छोटी छोटी सी खुशियाँ छुपी हुई हैं। और मैसेजेस हैं, थैंक यू मैम, कैन यू प्लीज से प्ले अ सॉन्ग छू कर मेरे मन को, क्या गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, टाइम होता तो मैं ज़रूर प्ले करती। उर्मिला ये लिख रही हैं वेस्ट बंगाल से, मैडम जी थोड़ा भोपाल वालों पर भी ध्यान दे दो। अरे भोपाल वाले जी, आपने देखो इतने सारे मैसेजेस, ये पता है क्या होता है, आप एक मैसेज लिखते हो ठीक है, उसके बाद आप 10 मिनट के बाद पेशेंस लूज करके दोबारा लिख देते हो, तो आपका मैसेज अब क्यू से हटके वो फिर दूर कहीं पहुंच जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, एक मैसेज लिखने के बाद वेट किया करो, नहीं तो वो मैसेज गायब हो जाता है। तो भोपाल वालों पर मैं अगली बार ज़रूर ध्यान दूंगी। और ये गाना बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक रिक्वेस्ट हुआ है, और ये मारिया जो क्लास 6th में है ये सुनना चाहती हैं मेरठ से। और ये गाना भी है, मोहित का मैसेज आया है विकासपुरी से, दिल्ली से, और ये गाना सोनू निगम की आवाज़ में। अब सारे गाने तो नहीं चल सकते, लेकिन आई एम श्योर ये गाना आपको अच्छा लगेगा, बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने भी सुना है, फ्रॉम द मूवी चॉकलेट। बस इसी उम्मीद के साथ ये आज हर गाना आपके दिल को थोड़ा सा छू गया होगा, मुस्कुराने की वजह दे गया होगा। दिस इज आरजे खुशी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अपनों के साथ संडे बिताइए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कि जिंदगी की प्लेलिस्ट में ना खुशियों का वॉल्यूम हमेशा हाई रखना चाहिए। खुश रहिए, खुश रखिए, और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल और लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं छोटे उस्ताद। जब हमारे आशियाने का जिक्र होता है तो हमारे नन्हे उस्ताद हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं और हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो उनका जिक्र जरूर करते हैं कि हमारे घर के उस्ताद, हमारे घर के बच्चे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्योंकि भाई वो होते ही इतने प्यारे हैं कि हर वक्त जबान पर उनका नाम रहता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज आपसे बात करूंगी अपने घर के उस्तादों के बारे में कि कैसे जब हम उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बन जाता है। चलते वो हैं लेकिन सिर्फ हाथ पकड़कर हम उन्हें रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं कि जब हम बच्चों के साथ ना खुद परफॉर्म करने लगते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो सब करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं बच्चे वो करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी वो सारे काम करें जिनकी उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर आपसे बातें होंगी बहुत सारी। तो आपके घर के उस्ताद हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप भी अपने पंख फैलाइए और कहिए फिर से उड़ चला।

पता है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो जीवन में नहीं हासिल करना चाह कर पाए और जो करना चाहते थे वो ताउम्र अपने दिल में एक रिग्रेट लेकर जीते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उम्मीद, हमारे अरमान हमारे बच्चों पर निकलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि मैं वो हासिल ना कर सका तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को वो हासिल करने के लिए मजबूर करूंगा। आए हाय, बस यहीं पर आपने कत्ल कर दिया अपने अरमानों का और अपने बच्चों के अरमानों का, जहां आप मजबूर कर देते हैं बच्चे को वो काम करने के लिए जिसे आप नहीं मुकम्मल कर पाए, वहीं आपसे ये चूक हो जाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी उम्मीदें पूरी हो तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को फोर्स बिल्कुल ना करें, ये ना सोचकर अपने बच्चे से काम करवाएं कि मैं ना कर पाया तो क्या हुआ, मेरे सपनों को मेरा बेटा मेरा

वैसा करने से सक्सेस मिल जाएगी? कभी सोचा है? आप जब वो सपने देखा करते थे तब जिंदगी कुछ और थी, कंपटीशन कुछ और था। आज समय बदल गया है, आज प्रायोरिटीज बदल गई हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का, जिंदगी में चीज़ों को लेने का तरीका बदल गया है, आप बदल गए हैं, ये दुनिया बदल गई है। और आपके बच्चे वो कैसे बदलेंगे जनाब? वो तो बस इस दुनिया से अपना ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि वो इस दुनिया से अपना ताल्लुक रखते हैं तो इस दुनिया के साथ ही कदम से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूँ। वो इसलिए कह रही हूँ कि जो अपने बच्चों पर बात बात पर हमें अपने अरमान थोपने की आदत सी जो हो गई है, कहीं ना कहीं हमें फ्रस्ट्रेट करती है और परेशान करती है हमारे बच्चों को। निश्चित रूप से अपने बच्चों पर हमें काम करना होता है, लेकिन काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूर नहीं प्रेरित करने के लिए क्या कुछ करना है ये जानने की आवश्यकता है। आप बस बच्चों पर अपनी चीज़ें थोपकर उनसे पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये आज की जनरेशन है जिसे आप आगे चलकर, यानी कि आज के दौर में आज की यंगस्टर्स को आप जेन जी कहते हैं। जेन जी से पहले भी वो जीवन में समय आता है जिसे हम स्कूल टाइम कहते हैं, और इसी वक्त में बच्चों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारम्भ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

0: श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
0: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निःशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में अपने बचपन के दिन जरूर याद आते हैं जब इस शो को करती हूँ। याद है आपको किस तरह से बारिश के मौसम में, जैसे ही बरसात शुरू होती, जैसे ही बारिश शुरू होती, और आप एक मौका ढूंढते और घर के बाहर निकल जाते, बारिश में खूब भीगते और भीग कर वापस आने के बाद भले ही माँ से एक थप्पड़ जरूर खाते लेकिन क्या खूबसूरत दिन थे वो, बाय गॉड, है ना। कागज की कश्तियां बनाना और घर के बाहर जो पानी बह रहा होता उन कश्तियों को चलाना, पहले तो जिद करना कि क्या हम बारिश में भीग लें, और दिन के वक्त, खास तौर इस वक्त 2 बजे के दौरान, जैसे कि आज मौसम हुआ हुआ है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ऐसे में अगर दिन के वक्त माँ सो रही होती है तो आंख मूंद के बाहर निकलाना बिना शोर किए, और बस बारिश में खूब नहाना, इतना नहाना कि जैसे पूरे साल भर की जो बारिश है वो इकट्ठी कर ली, खुशियां इकट्ठी कर ली, और उसके बाद जब घर पहुंचना, फिर भले ही डांट फटकार के बाद भी ना सुधरना, कहीं ना कहीं उस बचपन की मिसाल है जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि बच्चे को छींक भी ना आए हमेशा उसे रोकते टोकते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों अपने बच्चों को गलतियां नहीं करने देते? क्योंकि कहते हैं कि आपका बच्चा जब गलतियां करता है ना तो उन गलतियों से सीखता है। हम गलतियां उनसे करवाएं वो बात दूसरी है, उस बात में हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर बच्चा खुद डिसीजन लेके कोई गलती कर देता है तो उसे हम इतना फटकारते हैं, इतना डांटते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम भी तो कई बार बच्चों पर बहुत सी बातें थोपा करते हैं, और जब उनके नतीजे सही नहीं निकलते तब कहते हैं कि तुमने ही कोई चूक करी होगी। वैसे एक बात कहूँ, अभी अगर आपके बच्चे आपसे जिद कर रहे हैं कि हमें बाहर जाने दीजिए, छत पर जाने दीजिए, बालकनी में जाने दीजिए, और हमें थोड़ी देर बारिश के आगोश में कुछ बूंदे भर लेने दीजिए, ऐसा कीजिएगा, उनके साथ साथ आप भी बाहर चले जाइएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब जब हम बच्चे के साथ उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसकी जो सीखने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो आपसे परमिशन लेकर, आपको बताकर पूरी तरह से उस माहौल में अपने आप को डुबो लेता है, और दूसरा जब छोटे बड़ी प्रश्नों के माध्यम से वो आप तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी जिज्ञासाओं में उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बड़े प्यार से कहते हैं चक।

समय हो गया 2:22 में हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त गीतिका कन्याल, और प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करें, वो सपना पूरा करें, चाहे वो खुद का हो चाहे वो सपना आपका देखा हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि प्लान को अगर एग्जीक्यूट ढंग से किया जाता है तो सक्सेस यानी कि सफलता निश्चित होती है। अब हमारी आदत है कि हम वो सब अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब किताबें पढ़ें लेकिन हम क्या करते हैं, खुद भी किताबें कभी नहीं पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टीवी मोबाइल ज्यादा ना देखें लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आधा से ज्यादा वक्त टीवी मोबाइल में जाता है, रील्स देख देख के स्वैप करते रहते हैं। और जब फोन हमारे बच्चे के हाथ में होता है तो हम यही कहते हैं, जब देखो फोन पर अपना वक्त जाया करते हो, कुछ और नहीं करते हो। यकीन मानिए, ये जो सीख आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, कभी अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि आप जब देखें मोबाइल पर रहते हैं हमें समय नहीं देते हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब होगा? नहीं होगा। आप उल्टा उन्हें फटकारेंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माताजी पिताजी को, अपने पापा मम्मी को इस तरह से बोलने की, जबान अपनी कंट्रोल में रखो। गलत बात है ना, आप भी तो कुछ गलत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बच्चा खुद को ट्रांसफॉर्म करे, खुद को चेंज करे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब स्पोर्ट्स के लिए घर से बाहर निकले लेकिन आप खुद भी क्या करते हैं, घर के अंदर बंद रहते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर हम भी वो सब काम करें जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, तो आपको लगता है कि इसके परिणाम आपके हित में होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ दिन किताबें पढ़कर देखिए, एक तो खुद को सुकून मिलेगा और जब आपका बच्चा आपको किताबें पढ़ते हुए देखेगा तो उसके मन में क्षण भर के लिए जिज्ञासा जरूर होगी कि ऐसा तो कुछ जरूर है इन किताबों में जो पापा मम्मी जब देखो ये किताबें पढ़ते रहते हैं। आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप पौधों को पानी दीजिए, आपके बच्चे को ज़रूर इस बात का इल्म होगा कि कुछ तो ऐसी बात है इन पौधों में जो पापा रोज इन पौधों में पानी देते हैं। तो जो काम हम निरंतर करते रहते हैं वो काम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की आदतों में शुमार हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ये कहना कि ये काम करो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को कहने से पहले ही उस काम को करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हो सकता है कि आपके बच्चे को आपको पुश करना पड़े, उसके बाद भी आपका बच्चा ना माने आपकी बात, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो उसके फायदे आप अपने बच्चों को जरूर बता पाएंगे। और निश्चित रूप से बच्चा जब आपको करता हुआ देखेगा तो उसे महसूस होगा कि हाँ, ये जो काम माताजी पिताजी कर रहे हैं, पापा मम्मी कर रहे हैं, इसमें कुछ तो बात है। और क्योंकि आपके बच्चों में कुछ तो बात है, जब वो उस काम को करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अपनी सोच समझ का जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक बदलाव खुद ब खुद नजर आने लगेगा। आपका बच्चा खुद ब खुद उस काम को करने लगेगा। हो सकता है कि आज ना करे उस काम को, वो 4 साल, 2 साल, 10 महीने बाद करे, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने माता पिता का ही अक्स होते हैं। तो माता पिता का अक्स बनने के लिए जरूरी है कि पहले माता पिता अपने ऊपर खूब काम करें, जिससे कि बच्चा भी आपकी तरह आपकी राह पर चले।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका। अनियाल प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद और छोटे उस्ताद में हम तमाम तरह की बातें आज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो उस्ताद हैं, आपके आशियाने का एक अहम हिस्सा है, इन पर आप पूरा पूरा ध्यान दें, क्योंकि कल चल कर जब ये एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनेंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे, मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत काम किया है। कहते हैं कि कभी कभी ना हम परोक्ष, कभी कभी अपरोक्ष रूप से जो है अपनों पर या दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। अब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसकी लाइफ के हीरो हीरोइन होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो नहीं कर सकते। हम कहते हैं हमें ये चाहिए तो वो तुरंत हमारे लिए वो काम कर देते हैं और हमारी उम्मीदें, हमारा बस हमारे माता पिता पर चलता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो पिता जो घर में ब्रोकन चीज़ें, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, वो कुछ अलग तरीके के फादर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही वो चीज़, वो सामान बहुत तुच्छ सा हो, लेकिन पिता को जब ये लगता है कि इस सामान को भले ही एक नए सामान से रिप्लेस किया जा सकता है, एक नया सामान, एक नया गैजेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है और वो ख़राब हो गई है घर पर, उसको हम रिप्लेस कर पैसे देकर ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन वो पिता जो ये मानते हैं कि रिप्लेस करने से अच्छा अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ठीक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे की याददाश्त, उसकी मेमोरीज और जो एक परिवार का ताल्लुक होता है अपने फेलो मेंबर्स के साथ, और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पिता की अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। अब जब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ, सोचिए किस तरह से बचपन में जब आपके पापा घर पर किसी टूटी हुई चीज़, मान लीजिए साइकिल, जब उसे घर पर खुद रिपेयर करते थे, आंखों के आगे वो चित्र याद आ रहा है ना, टीवी जब ख़राब हो जाया करता था, घर की ट्यूबलाइट टेस्टर, जब ट्यूबलाइट ना जलती हो तो टेस्टर से चेक करते हैं और देखते हैं कि ट्यूबलाइट ख़राब हुई है, क्या दिक्कत है। कोई भी घर की इलेक्ट्रिक चीज़ जिसको ठीक करने में वो अपना जोर लगा देते, भले ही बाद में उसे खरीद कर लाया जाता अगर वो ठीक ना हो पाती, लेकिन पहले कोशिश क्या की जाती कि उसे ठीक की जाए। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस घर में पिता चीज़ों को रिप्लेस करने के बजाय उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो अपने बच्चे की थिंकिंग पर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर, उसकी इमोशनल वेलबींग पर, यानी कि उसकी भावनात्मकता पर बहुत गहरा असर डालते हैं। वो बच्चा अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, चाहे वो ज़िंदगी में आगे चलकर एक बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, घर से दूर रहकर काम क्यों ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की इस तरह की गतिविधि इमोशनल बॉन्डिंग का कारण बनती है, इस बात का प्रतीक होती है कि चीज़ों को

घर में, एक घर में स्थापित की जाती हैं, जो एक घर में होती हैं, वो कितने मायने रखती हैं। जब एक चीज जिसको रिपेयर किया जाता है, नई चीज नहीं लाई जाती, पुरानी चीज को ही ठीक किया जाता है, उसका अर्थ सीधे सीधे ये होता है कि हमें अपने घर के परिवारजनों के साथ मिलजुल कर रहना है। इमोशनल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्रिएट करती है पिता की ये ताकत, पिता का ये तरीका। और जब बच्चा करते हुए देखता है पिता को, तो कहीं ना कहीं एकता की भावना उसके मन में उमड़ घुमड़ कर पहुंचती है, उसके जहन से उसके काम में। और जब उसके काम में वो चीज़ समृद्ध हो जाती है, तो आगे चल के वो एक मुकाम हासिल करता है। और यही कहता है, जी बिल्कुल यही कहता है कि पापा मुझसे ना बहुत उम्मीदें रखते थे और मुझे मालूम था कि मैं कहीं पहुंचूंगा तो ज़रूर, क्योंकि पापा जो जो करते गए मैं उनके साथ वो करता गया। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माँ का गहरा असर होता है, पर यकीन मानिए माता और पिता दोनों का बच्चे के जहन पर, उसकी परवरिश पर, उसकी सोच पर असर होता है।

जी बिल्कुल, आपका बच्चा बड़ा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर, यानी कि जब आप प्रारंभिक दौर में होते हैं अपने बच्चे के साथ, आप भी होते हैं, यकीन मानिए आप भी होते हैं अपने बच्चे के साथ प्रारंभिक दौर में। उम्र अपने हिसाब से बढ़ती है, लेकिन उसका एक हर दौर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, उसकी हर एक गतिविधि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप कि सबसे प्रिय जो खोज है, जो क्रिएटिविटी है, जो संरचना है, आपका बच्चा है। इसलिए उसकी हर गतिविधि, उसकी पहली बार चलने से लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने तक आपके दिल में एक अहम जगह रखती है। आपके दिल का कोना हमेशा आपके बच्चों की हर छोटी बड़ी बात से प्रफुल्लित रहता है, और हम यही कहेंगे कि आपके लिए तो वो यादें बन जाती हैं, क्योंकि बच्चा हर रोज़ कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है और फिर अपने लिए ज़िंदगी मुकाम हासिल करता है। कुछ बातें हो सकता है बच्चे के मन में रह जाएं, कुछ बातें वो भूल जाए, लेकिन आपके लिए हर वो क्षण, हर लम्हा, हर साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर क्लास, हर ग्रेड यहाँ तक कि फिर कॉलेज, फिर उस जिस जिस संस्था में वो काम करता है, जिस जिस मुकाम को हासिल करता है, उसकी शादी, कल चल कर उसके बच्चे, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है ना। तो जब इतना कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण नहीं है वो क्षण, जिस क्षण में आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपकी। हमेशा कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु है, माँ बच्चे को हर वो बात सिखाती है जिसके लिए बच्चा अपनी माँ के पास सबसे पहले जाता है। चोट भी लगती है तो माँ के पास जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पिता का दबदबा ज़्यादा होता है, या यूँ कह लीजिए कि पिता अपने कंधों पर सारा भार उठा लेते हैं, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होते हैं, एक ही पिता है या माता ही है जो अपने स्पाउस का भी रोल अदा कर रहे होते हैं, तो वहाँ बच्चे के लिए पापा में ही मम्मी या फिर मम्मी में ही पापा दोनों मौजूद होते हैं, तो वहाँ जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर सवाल यहाँ पर ये है कि हम अपने बच्चों पर अपने सपनों को ना थोपें, हम अपने बच्चों को आज़ादी दें कि वो अपने लिए सपने खोज सकें। सोचिए सपने बुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी, उसके लिए ज़रूरी बताऊँ क्या है, उसके लिए हम ना अपने बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं, उन्हें सपने दिखाने का काम कर सकते हैं। सपना क्या देखेगा ये उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन उस क्रिएटिविटी में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपने अपने बच्चे से किस तरह की कहानियाँ बुनी हैं, किसका जिक्र किया है, किनका जिक्र किया है। जब अकेले में आप अपने बच्चे के साथ समय गुजारते हैं तो आप किस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं, यकीन मानिए आपका उन बातों का जिक्र करना जो कल उसके भविष्य का निर्माण करेगा या फिर उसको सपने बुनने में मदद करेगा, आपकी कहानियों पर निर्भर है। किन लोगों को सम्मिलित करते हैं, किन जगहों को सम्मिलित करते हैं, किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और सच बताऊं, अब वो ज़माना गया, वो दौर गया जब हम ये सोचते थे कि रट्टा मारा और पास हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी की ये जो किताब है, यहाँ अपने बच्चे को आपको हमेशा सफलता दिलानी है और उसको लाइफ स्किल सिखाने हैं और सिखाना है। सिर्फ रट्टा मार देने से ही ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों में इन्वॉल्व हों और उनके आउटकम्स को जानें, उनके आउटकम्स को समझें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद इन्वॉल्व हों, यकीन मानिए, यकीन मानिए, बहुत बड़ा बदलाव आप खुद देखेंगे अपने बच्चे के अंदर।

वैसे सही बताएं कि वो बच्चे जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो सोचते हैं, समझते हैं और इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, उनको रट्टा मारने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब इनिशियल स्टेज पर आप अपने बच्चे की राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तब तो आपके बच्चे को रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहती हूँ कि आप नियमित रूप से ना लिखते रहिए। अब आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक हमारे बच्चे के साथ क्या है? जब आपका बच्चा ये देखेगा कि आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी आदत में शुमार कर लेगा लिखने को, यानी कि वो भी लिखेगा। जब वो देखेगा रोज रात आप सोने से पहले कुछ लिखते हैं, आप कविताएं लिखते हैं या कुछ ना कुछ आपको लिखने की आदत है, तो बच्चे के अंदर भी ये भावना उत्पन्न होगी, इंस्टिल होगी कि हमें भी लिखना चाहिए। और उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को होगा। बहुत से बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन जिस तरह से अब एजुकेशन पॉलिसीज आने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझें और उसको अपने शब्दों में बयां कीजिए और सच मानिए, ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए मददगार साबित होता है। जब आपका बच्चा पूरा पूरा चैप्टर आपको सुना देता है, होता है होगा आपके साथ, आप अपने बच्चे को वो 10 आंसर्स लर्न करने के लिए ना बोलें, आप ये कहिए कि पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर मुझे सुनाओ और उससे ना छोटे बड़े क्वेश्चंस फ्रेम कर पूछिए, देखिए कैसे आपका बच्चा तुरंत आप तक पहुंचाएगा वो बात जिसे सुनने के लिए आप आतुर हैं। यानी कि सही आंसर, हम यही तो चाहते हैं हर वक्त अपने बच्चों से कि बस उनका जो जवाब हो ना हमेशा सही हो। बस खुद ये भूल जाते हैं कि हमने कितने सवालों का जवाब उन्हें दिया है या नहीं दिया है। हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा जो भी सवाल आपसे पूछे उसका जवाब ज़रूर दीजिए उसे।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे घरों में रौनक है, और हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। कभी कभी तो हमारी उपस्थिति ही बिना बात किए ही उनके जहन में एक अमिट छाप छोड़ती है। हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, हम जैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक दृश्य बनाती है, एक चित्र बनाती है जो उनके लिए आगे चलकर बहुत कारगर साबित होता है। तो सोचकर समझकर अपने मुख से, अपने मुंह से शब्द निकालिए, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं, और ख़ास तौर पर जब घर में बच्चे छोटे हों तो आपकी बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं, और क्योंकि आपकी बात को जब वो कैच करते हैं तो आप अक्सर उनके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द सुनते हैं। यकीन मानिए, वो शब्द उनके अपने नहीं, आपके हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर

आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके बच्चे हैं। उनकी परवरिश के साथ साथ आपको उनकी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखना है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि भले ही आप जो जीवन में चाहते हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, आप निश्चित रूप से उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन कभी भी अपने एम्बिशंस के चलते अपने बच्चों की सिक्योरिटी को सेकंड पोजीशन पर ना रखिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आपका जीवन है। और अगर हमारे घर में हमारे बच्चे ना हो तो जीवन कुछ नीरस सा है। तो याद रखिए, यकीन रखिए कि आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल गीतिका आपसे लेती है इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात। मुलाकात का समय जी 4:05 से हम आपके साथ हाजिर होंगे। वैसे 4:05 से आपके लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद आपका पसंदीदा रिंपू जीनियस लेकर आएगी नाचीज गीतिका। और यहाँ फिलहाल आपसे लेती है इजाज़त, होगी मुलाकात 1 घंटे बाद। टेक केयर।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

1981 से लगा और भी एक क्लासिक होनी अब मोहम्मद रफी अशा भोसले और बदमीनी अवस्थे म्यूजिक दिसे आर डी परमन लिरिक्स मशरू सुल्तानपुरी फिल्म असे जमाने को दिखाना है खुनी कितना एंजॉय कर भी माय डियर फ्रेंड्स।

वेल माय डियर फ्रेंड्स, अनदर रोमांटिक गीत लग रहा है मैं कहने अच्छी लगा प्लेलिस्ट से इसको दिया बो और इतनो हर अंदर अपने कान सब के बेशी खुशी बात चना आइडिया से अपने कान कुन कुन ट्यून इन करके ना से थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे लास्ट गीत होने के नाम कहने तो प्रोग्राम से इसको दिया बो हम दोनों फिल्म रहती है मोहम्मद रफी और आशा पोशली अवस्थे म्यूजिक दिस इज जयदेव लिरिक्स सही এটো পিছত আপুনি খান 7:10 মিনিটলৈ নাগামিষ্টেভিজন খবৰ দিয়া শুনিব। তো মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ শুনিবি লাষ্ট গীত।

0: पर गर्व है। एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: युनियन मिनिस्टर आरो खुशी की देश लगा कुनुबिक प्रदेश दे एतिया पुरा एक दिन लगा हजारा तु 300 लाख टका लगा नीचे न होबो ताई पुरा कोथा राखी दिशे की फंड्स दे एकु कमती ना थिकिबो वीबीजी रामजी लगा इम्प्लीमेंटेशन कारणे ट्रांसपेरेंसी आरो अकाउंटेबिलिटी लगा ओपोर कोइना युनियन मिनिस्टर टू खुशी की फेस ऑथेंटिकेशन जियो टेगिंग आरो अलग टेक्नोलॉजिकल काम खान तु सब कुरिबो इतु इम्प्लीमेंट कुरिबोले। वेस्ट एशिया ते सीज फायर कुरा पिछे दे LNG shipment can Strait of Hormuz te kholai dishe itupura center to hile natural gas supplies after liquefied natural gas laga emergency curb to hatai dishe ekta notification te Ministry of Petroleum and Natural Gas pura koise ki natural gas supply regulation order 2026 to hile MN kuri dishe tate ki emergent provision to hatai kina itupura so कार्ड के खोलाई दिशे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड एलएनजी टू लोबोले इमरजेंसी ऑर्डर टू हुए इतु साल मार्च दे दिशे एसेंशियल कमोडिटीज एक लगा नीचे थे एलएनजी शिपमेंट खान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दे दिगदारी उला पीछे थे। यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया टू अजी फुजो नई दिल्ली ते 80th एडिशन ऑफ फिट इंडिया ऑन साइकिल इनिशिएटिव ते भाग लैसे इतु मिशन टू हुइले एकता हिला लगा असे आदते बदलाव आनिबोले आरो जिंदगी ते फिजिकली एक्टिव थाकी केना आगे बढ़ी बोले। मीडिया लोगो कथा कुरी केना यूनियन मिनिस्टर कुशी की साइक्लिंग कुरा पुरा स्वास करने बिशी फायदा असे ताई पुरा इतु एकता सोल्यूशन असे कुशी पोल्यूशन आरो शहर ते ट्रैफिक निबिते।
2: साइक्लिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइक्लिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइक्लिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है और एक साइक्लिंग व्यक्ति को विदेशी हुडियामन से भी देश को बचाती है, क्योंकि तेल हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। क्यों न हम साइक्लिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। आज देश में 4 में से 1 नागरिक ओवरवेटेज है, क्यों न हम प्रधानमंत्री जी की ओबेसिटी खिलाफ मूवमेंट के साथ जुड़ के अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
1: सेंटर टू हुई मेहता के एकता करा नोटिस टू दिशे चाइल्ड एक्सप्लोइटेटिव और एब्यूज मेटेरियल जुन टू एड्स पोरा कमाए सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंस्टाग्राम निशना पोरा ऑफिशियल सोर्सेस पोरा कोशे कि सरकार टू हुई इंस्टाग्राम के ऑर्डर दिशे सब एड्स के डिसेबल करिबोले और कंटेंट प्रमोटिंग और एब्यूसिव मेटेरियल्स के एक्सेस करिबोले पारियाकान। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पोरा मेहता के एकता डिटेल एक्सप्लेनेशन टू मांगिशे 7 दिन लगा माजते सरकार टू हुई इतु प्लेटफॉर्म के रिव्यू करी आसे जुन टू इंडिया लगा इंटरमीडिएट सेफ्टी गाइडलाइन जुड़ी आस ना पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करा तो क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे इंडिया लगा डिजिटल कानून नीचे थे। अदनी खान तो आकाशवाणी कोहिमा पुरा दिया खबर शुनी आसे ताजा खबर जल्दी पाव कारण आमी खान ला एक्स हेंडल्स AIR न्यूज एलर्ट्स और AIR _ कोहिमा ते फॉलो करिबि। अदनी खान पुरा इतु खबर तो न्यूज ऑन एयर एप और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज कोहिमा पुरा शुनबले पारिबो। वेलकम बैक अपनी खान साम लगा खबर शुनी आसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR लगा फ्लैगशिप इनिशिएटिव दे ICMR माइंस एकता नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी प्रोजेक्ट टू हुईले नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 दे गोल जुटीशे। अवार्ड टू हुईले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूरा प्रेजेंट करिशे। रिकॉग्निशन के एड्रेस करा समय डायरेक्टर जनरल ऑफ IMVR डॉक्टर राजीव भाल पूरा कैसे कि ICMR टू हुईले इतिया भी डाटा ड्रिवन टू चला থাকিবো স্কেলেবল টেকনোলজি টু চলাই কিনে পাবলিক হেলথ দিগদারি খান সলভ করবলে। তাই পুরা কৈছে কি জারি থাকা কোলাবোরেশন পার্টনারিং ইনস্টিটিউশন আর স্টেট হেলথ সিস্টেম লগো ICMR টু হইলে মন রাখি আছে এফোর্ডেবল স্ট্যান্ডার্ডাইজ আর হাই কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার টু ইন্ডিয়া লাগা মানুষকে দিবলে। মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার পুরা জনাইছে কি ICMR MINDS টু হইলে একটা রিসার্চ স্টাডি টু করে আছে ইন্টিগ্রেশন লাগা ওপর তাতে স্ক্রিনিং আর ম্যানেজমেন্ট টু মেন্টাল আর সাবস্টেন্স ইউজ ডিসঅর্ডার টু সাব নন কমিউনিকেবল বিমারী খান্তে ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম টু হইলে মেন্টাল হেলথ স্ক্রিনিং এসেসমেন্ট ফলো আপ আর রুটিন ম্যানেজমেন্টে সাব পারে স্পেশালিস্ট পড়া ট্রেন

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा

0: सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा

0: सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
3: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Soap Saltar Health Center stay BP laga free check up treatment aro kau phal thakibo laga motop dise BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-6660 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: itu jankari NTEP bra dise
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
6: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
5: अरे
3: काट दिया
7: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apnikan sokke program ne swagat kori ase. Akashwani Kohima FM Chagban 103 MHz te. Apnikan laga host aur dost arjitam din lagude. And apnikan sobi ekta RJ's Choice ne film songs program hunibo karne apnikan sobke invite kori ase. And for the next about 24 minutes, we will enjoy a selection of songs that beautifully blend romance, emotions, and memorable music from different eras of Hindi cinema. To my dear friends, apni khan cordial se, noli bhi ekta friends kal nukre enjoy kure se, noli bhi kut kude thakye se, apni khan sab bhi FM track ban chari kina na jabi, aur program khatam no hata khuni kina enjoy kuru karne koi diye se. तो पहला गीत आम शुनी हम जब वी मेट फिल्म रा मोहित जोहन लगा एकदम भल अवस्थे और यू रोमांटिक हिट तो हेले दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ 2023 शुनी कि एंजॉय करी म्यूजिक दिशा प्रीतम लिरिक्स इर्शाद कमिया

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।